ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो। सहज आनंद रखियो गृह पीतर,

मन तन तेरा, तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा।

राग गौड़ी ग्वारेरी विच ऋषभ कोमल मध्यम तीबर अते बाकी सुर शुद्ध लगदे हन। इस दे आरोह विच ऋषभ पंचम अते अवरोह विच पंचम वर्जित है। इस दी जाति औड़व शाड़व वादी गंधार संवादी धैवत अते समा शाम है। इस राग विच गुरसिख हर बोलो मेरे भाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

साहेब सतगुरु गुरकल की तर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड़ सचखंड साहेब पातशाह की हजूरी विच सदके जदो तख्त चवर दे मालिक साहेब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जो हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाओ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मन्या जांदा है ते जां उसकी अवज्ञा हुंदी है। अवज्ञा करन वाले नूं जो सजा हुंदी है यह सारा संसार जानदा। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मन्ने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो दिना वर्तारा वरदा है, किसी भी अग्ञानी तो अग्ञानी पुरुष तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह का यह हुक्म है सब सीखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। तो यह हुक्म कलगीधर का सुन के ओदा कहाउण वाला कोई गुरु का सिख किसी देह दे अंदर गुरु का विश्वास रखी तुरिया पे ऐसी कलगी धर दे हुक्म की अदूली करने वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकता है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज इन्हीं मैं दे। ते जे गल्लां करनी है जे बातां करनी है जे दीदार करना है ते बह जाओ हजूरी विच सज जाओ आके इशनान करके जल्दी ये साहब की बख्शिश है भी जो गल्ला करोगे तुहाडी रसना ती आप ही बोल बोल तुहानू सुनाई जाऊगी ऐ कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर ए उत्तम है ए प्रमाणिक है ए ना प्रमाणिक है तुहाडी रसना ते बैठ के तुहानू समझाई जाऊ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता जिहड़ा तुहाडी रसना नूं वरत के आप ही तुहानू कही जाए जल्दी बोलण वेले तुहानू ही गुरु बना दे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का करिश्मा है ते जिन्हें भी प्रभु नूं खोजना है ते इहदे विच समाया है ते राह दसेगा। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है, आपे दसणगे जो गुरु सतगुरु का जो सिख का आपे बोलणगे। जिहड़े कहिंदे ने इह बोलदा नहीं इह सुणदा नहीं ते मैं समझा भी रब ने संसारक कन्न तां उहनां नूं दित्ते पर गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा सुनने वाले कन्न नहीं उन्हां नूं दित्ते। नेत्र तां दित्ते पर साहिबां दी दसे सतगुरां दी जोत वेखण वाले नैण नहीं दित्ते। सुन के अमल करन वाली गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान करवाउण वाली शब्दावली सुनदा उन्हां नूं संसारक तौर ते तां इंदिरा कर्ण बख्शिया है पर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश सुन लई नहीं दित्ता। इस लई सब सिखन को हुक्म है आओ टेको मथा ते गुरु मानियो ग्रंथ। आओ बीबिया तो शब्द सरवण कर लो ते साहिब सतगुरु पातशाह दी मेहर दा सदका जी चित दा करदा नहीं पर बदे रुदे बाबा जी दी क्योंकि सेहत मैं समझदा भी गुरमुख भुल जांदे ने अपना आपा शरीर दा जे हर जस ना हुंदा होवे ते संसार दीआं गल्लां बातां हुण फेर भावें शरीर दे विच उहनां दी सुता आ जाए ते महसूस करन वी सानूं कुछ खेद है पर जे शरीर दे विचों शब्द दी टंकार दे नाल कोई गुरमुख सुना के गुरु का कीर्तन ते गुरमुख गुरसिख महापुरख दी आत्मा नूं उहदे असली टिकाणे ते लै जाए उहनूं शरीरक कष्ट भुल जांदे। सो साहिब दी बख्शिश है मेरी तां इह अरदास है गुरमुख आत्मा नूं सतगुरु सदा लंबेरी आजु ते अरोगता बख्शे तां जो असी संगत करके दीदार करके इन्हां दी कमाई दा करिश्मा वेख के कदे साडे मूर्खां दी भी सुरत इस पासे नूं पलटे ते असी भी कुछ अपना परमार्थ दा धन पल्ले बन के जिस मार्ग दे उत्ते हर एक ने समय समय अपनी वारी सिर तुरना असी भी अपनी वारी सिर तुरन तो पहला कुछ ना कुछ पूंजी भी हाज लईए ते जिहड़ी सानू उत्थे कम आ सके। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

आमर गुरुदास स्वामी का नाम आ रहे हैं। यहाँ कालो कालो ग्रहण आपचार्य हैं।

पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां या बुरियां।

सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के चरण कमलों पे नमस्कार। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग महला पहला दा इस शब्द इस दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं ऐ स्त्री ऐ जीव स्त्री जब तेरा त्रिही प्रसन्न नहीं है तो श्रृंगार का की अर्थ।

क्योंकि उसने किस लिए श्रृंगार किया, अते वो खुआर होंगी। आओ अज इस कीर्तन नू पिछले कीर्तना दी लड़ी दे नाल जोड़िए। जद तेरा अंदर ही गलिया पिया है, सब गुण तेरे गल चुके हैं, अंदर गलिया पिया है और उपरों तू श्रृंगार कर दी, तेरे सारे ही गुण गल गए हैं, सारे तेरे गुण गल गए हैं, फिर तो दूर जान नाल, फिर तो दूर जान नाल मंदिर दे विच भगवान होवे, मंदिर दे विच अगर भगवान ही नहीं रहा तो फिर मंदिर कादा रह गया, एक सुन्नी इमारत रह गई। तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु की पत्नी सी, औरत सी, एकाया, जब तू उस नालों ही टूट गई फिर तू सुहागण किस तरह रह गई, फिर तू सुहागण ना रही, फिर तेरा दर्जा सब तो उत्तम ना रहा। अते उस फिर तो वाहिगुरु तो अकाल पुरख तो आत्मा तो दूर चली जान दे नाल तेरे सारे ही गुण गल गए हैं। असि सुनिया सी ना, हर बिसरत तेरे गुण गले। जदों तेरे सारे ही गुण ही गल चुके हैं, अंदर टोटल रॉटन हो चुका है, तो तेरे बाहरले श्रृंगार, बाहरलियां सुगंधियां, बाहरली सजावट, मांग छपाया होया संधूर, पहने हुए गहने, कि तेरे उस अंदरले गले हुए हिस्से नू ये छुपा सकेंगे? जब तेरे तमाम गुण गल चुके हैं, रॉटन हो चुके हैं, अंदर तेरी दी ये तस्वीर है, तो तेरे श्रृंगार का की अर्थ? गुण गल चुके हैं। आज देश कीर्तन बहुत गौह दे नाल सुनना, विचारना, क्योंकि गुरु बाबा जी आखते हैं कि ऐ स्त्री, ऐ जीव स्त्री, उस फिर ने तेरे बाहरले श्रृंगार नू नहीं देखना, उस फिर नू तू श्रृंगारी चंगी लगती है, और जिन्नी देर तक तू श्रृंगार नहीं लेंदी उतनी देर तक उसने तेरे नजदीक नहीं आना। पर पहला तू ए ते समझ कि वो किस चीज के नजदीक आंदा है, किस चीज के नाल वो वस आंदा है। गुण तेरे गले पे हैं, ते महाराज जी की बाणी की पंक्ति सुनो हूं।

सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो। कहते आ श्रृंगार बनाओ पत्नी नू, जदों पत्नी बनती है, जदों उसका मिलन हुंदा है, जदों उसकी शादी हुंदी है तो श्रृंगारी जांदी है। कहते अकाल पुरख वाहिगुरु भी अपनी दुल्हन नू उदों ही कबूल करता है जदों पूर्ण तौर ते गुणा दे नाल श्रृंगारी पई होवे, श्रृंगारी पई होवे। पर केड़े केड़े श्रृंगार दे नाल, किस श्रृंगार की गल करते हैं? सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बना लो, इस श्रृंगार बना लो। ऐ श्रृंगार है, ऐ गुण है। सत का मतलब है पर उपकार देना, सेवा, किसी के काम आना। क्योंकि जदों लफ्ज दो गुरबाणी असूल है कट्ठे आन के सत संतोख, उत्थे सत का मतलब ट्रुथ नहीं है, सच नहीं है। ऐ असूल सत संतोख, सत का मतलब है संतोख, और सत नू जो महाराज जी ने जोड़िया उसके विच गहरा राज है। अपने प्रति जो भी पास है उस संतोख, पर देण वेले संतोख नहीं धारण कर लेना, दूसरे नू देण वेले नहीं संतोखी बन जाना, उसले वध तो वध जो हो सके वो करना है, वो देना है। पर असी अपने प्रति संतोखी नहीं है, दूसरे प्रति असी संतोखी, जिहड़ियां सानू जरूरतां हन उन्हां दे विच संतोख नहीं। वी वांट मोर एंड मोर एंड मोर, ल्यों ल्यों कर फिरे सब लोग, सारे लोग लै लवां लै लवां लै लवां, बस मैनू मिल जाए, यही करते फिरते हैं। कहिंदे स्टॉप दैट, संतोख धारण करो। पर जदों परोपकार का सवाल आता है, देण का सवाल आता है, उदों संतोख ना धारण कर लो। सत संतोख दया अते अपने अंदर कंपैशन, दया, किसी का दुख देख के बर्दाश्त ना करना, किसी नू हर्ट ना करना, किसी हर्ट होए नू देख के उसनू बर्दाश्त ना करना। तुहाडे दिल च दया आनी चाहिए, दया एक गुण है, दया एक गुण है। कहिंदे सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बना लो। हुण अपनी जिंदगी च जिन्हां ने पुछया है, ये सब तो पहला सबक है। कल दे कीर्तन च इस तो अगली गल मन और आत्मा दी कीती जाएगी। दास ने पहले दिन जो शब्द गायन किया सी उस दे विच गुरु बाबा जी ने तिन्ने ही चीजां नू एड्रेस किया सी, बॉडी माइंड एंड सोल। अज असी सिर्फ बॉडी दे ही लैवल ते, उठन बैठन दे लैवल ते, अपने इंट्रैक्शन दे विच, एक दूसरे दे नाल मिलन गिलन दे विच, जो बोलन चलन दे विच, तमाम जो गुण हन जिन्हां दी ग्राउंड तो बिना भगती आरंभ नहीं हो सकती, अज असी उन्हां दी गल कर रहे हैं। मिठत नीमी नानका, गुण चंगियाईयां तत मिठत। हुण जे तुहाडे सुभा दे विच कौड़ापन है, बिटरनेस है, रूडनेस है, मिठास नहीं है, तो फिर तुहाडे परमात्मा नजदीक नहीं आ सकता, तुसी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवगुण है। सो इसनू अज ही त्याग के चले जाओ, और अज सुगन कसम लाओ महाराज के चरणों च बैठ के कि मैं इस अपने मंदिर दे नाल, इस इंस्ट्रूमेंट दे नाल कदे भी कौड़ा नहीं बोलांगा, मिठत। और जिस दिन कौड़ा बोल पाए उस दिन समझ लो निर्गुण राम गुणे वस हुए। कौड़ा बोलदिया सार अवगुण आ गया कि तुसी अफोर्ड करोगे अवगुण, क्योंकि अवगुण ने वाहिगुरु नूं दूर कर देना, वो अवगुणा तो दूर हुंदा है। दूसरी गल आखी है मिठत नीवी, वो है निम्रता, नीवे बनना, नीवें बनना, किसे तो अपने आप नू सुपीरियर ना समझना। ए नहीं समझना कि दूसरे मेरे तो किसे भी तरह मेरे तो कम हन, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ए आदतां हन, ए सुभा हन, पहला ए तारण करने हैं।
ਐ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਸਲਾਹ ਹੈ ਆਪਕੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਉ ਅਗਲੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੋ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਸਭ ਸਲਾਹ ਆਪ ਕੋ ਵੱਡੋ ਵਡੇਰੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹਦੇ ਹਨ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਲਾਹੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਨ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਕੰਕਰ ਅਦਰਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਫੋਰ ਦੈਟ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾ। ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦੇ ਕੇ ਗਜਾਨੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਲਿਆਣੀ, ਸਾਦਗੀ ਲਿਆਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਡੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਪੰਨੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਹਾਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਹਨ। ਸੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਠਾਸ, ਸੁੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪੇ ਚੱਕੀ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪੇ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ, ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
कोई परसू भी करे तां भी मैं खाना नहीं, वो संजम है। इतने बजे मैं जाग जाना है क्योंकि मैं अभ्यास करना है, इतने बजे सौ जाना है क्योंकि अमृत वेले उठना है, वो डिसिप्लिन है। अननेसेसरी कितने टाइम वेस्ट नहीं करना है, अते सिर्फ लोगों नू अबलाइज करन दे वास्ते, लोगों नू अबलाइज करन दे वास्ते रात दे एक एक दो दो बजे तक पार्टियों च बैठे रहे थे, अमृत वेले कदों उठोगे तुसीं? उस दे लिए डिसिप्लिन होना चाहिए है। उस दे वास्ते लोगों की कई दफा अगर नाराजगी सहारनी पवे तो गुरमुख जो है वह उसनू भी कह दिंदा है कि मेरे डिसिप्लिन दे विच फर्क पैंदा है। डिसिप्लिन दे विच रहना, संजम दे विच रहना, सील संजम सुच। कहिंदे ऐ तीन चीजां ते भन्ने ही दित्तियां हन, सील संजम सुच। सुच दा अर्थ हुंदा है बहुत पवित्रताई दे नाल इस मंदिर नू वाहिगुरु दा मंदिर समझ के कि मैं वाहिगुरु नू सर्व कर रहा हां, बहुत ही साफ सुथरे ढंग दे नाल प्रेम नाल सर्व करना है, ना कि जूठे मूठे हत्थां नाल आप ही चक्की जाओ, आप ही खाई जाओ, आप ही पाई जाओ। सुच दा नामो निशान नहीं रहा, असीं नाले खाई जाने हां नाले लिखी जाने हां, नाले खाई जाने हैं नाले टेलीफोन अटेंड करी जाने हैं, वही जूठे हाथ टेलीफोन लगते हैं फिर कोई दूसरा आके उसको पकड़ता है। सील संजम सुच पन्नी कहते पन्न दिती है, ये अवगुण हैं। खाना खाज अहाज, अते खाना साडा उस दे विच हुण सानू होश ही नहीं रही कि ये बनाया किसने है, किवें बनाया है, साफ सुथरा होके बनाया है जां नहीं बनाया। खाज अहाज जो गलत मलत है वो असी खाण लग पे, रेस्टोरेंट्स दे विच असी खाने हैं। तुसी कदे सोचो ते सही वो लोग जो अंदर रोस्ट हो रहे हैं, वो बड़े बड़े ओवन्स दे आले दुआले खड़े होके कुक कर रहे हैं, वो बहुत मन दी शांति च अते प्रेम दे नाल कुक कर रहे हैं, कोई भावना दे नाल तुहाडे सामने प्लेट लिया के रखते हैं। पता नहीं कितने जले पुजे हैं अंदरों बेचारे सारे दिन दे थके मंदे, ते उस किस्म की एनर्जी उस फूड दे विच आंदी है जिसने वो तैयार किया है, तो असी बाहर बैठ के उसको रैलिश करते हैं। किस स्टेट ऑफ माइंड दे नाल उसने बनाया है सानू कोई पता नहीं है, उसके हाथ साफ सन या नहीं सन सानू पता नहीं है, सुचे सन या नहीं सन। कितने ऐसा तो नहीं कि साढ़े ही खाने नू उसने पहला टेस्ट करके देखा हो कि स्पाइस ठीक है या नहीं है, हाउ डू वी नो। पर साढ़े च कोई अज परहेज ही नहीं है, जिथे मर्जी बैठ जाओ और खा लो। दास ट्रैवल कर रहा सी लंडन तो मस्कट तक की फ्लाइट दे विच, ओ एयर होस्टेस दो तीन दफा आई हैं पूछन लगियां कि मिस्टर सिंह यू वांट एनीथिंग, मैं कहनो आई हैव माय ओन वाटर एंड समथिंग टू ईट। फाइनली उन्होंने मैंने पूछा कि व्हाट इज द रीजन यू आर नॉट टेकिंग इवन टी फ्रॉम अस एनीथिंग इवन वाटर। मैं क्या इसका कारण यह है कि इको ही ट्रॉली दे विचों तुसी मीट भी सर्व करी जा रहे हो, अल्कोहल भी सर्व करी जा रहे हो, बीयर भी सर्व करी जा रहे हो, फिर लोकां दे जूठे भांडे चक चक के फिर वापस रखी जा रहे हो। मैं कहा हैव यू वॉश योर हैंड्स, कहिंदी नो। मैं कहा देन आई कैन नॉट टेक फ्रॉम यू, इफ यू वांट टू गिव मी समथिंग गो एंड वॉश योर हैंड्स, क्योंकि क्लीन नहीं। कहिंदी हु कैन बॉदर फॉर ऑल दैट, वी कांट बी बॉदर फॉर ऑल दैट। इस करके मैं कहा मैं तो कुछ लैके खांदा नहीं। ए अवगुण हैं, असा ए तमाम कुछ जो ग्राउंड है इसनू पहला सीखना है, उठना बैठना खाना पीना बोलना चलना ए तमाम पहनना ए सब कुछ सीखना है। और सब तो वड्डे जो गुण हैं वो है निम्रता। ओह सबना की रेन का तो आओ हमारे पास, महाराज जी कहते इतनी निम्रता तेरे अंदर होवे कि तू सारे दे चरणा की धूड़ बनिया पिया होवे ता जाके साडे पास आई। हो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास, मिठत नीवी नानका गुण चिंदियां तत्। फिक्का बोलने की गुंजाइश ही नहीं छड़ी महाराज ने, नानक फिक्के बोले तन मन फिक्का होए, फिको फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगा सटिए मूर्ख थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लहे सजाए। पाणा जुतियां नू आखते हैं, कहिंदे हम दरगाह च उसदे जुतियां पैंदियां हुण। नाउ थिंक जदों भी तुसी फिक्का बोले हो ते तुहाडे उते आ कुछ लागू हुंदा है। फिक्का दरगा सटिए मूर्ख थुक्का फिक्के पाए,
ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਉਸਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਓ ਕਿ ਮੁੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਨ ਕਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਲੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਥ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਨੈਸ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਟਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨਾਲ, ਪਰਫਿਊਮਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਦਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਓ, ਸੰਤ ਸਮਾਪਤ।

कबीर साहब जी की बाणी भी एक पंक्ति बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि उन्होंने बहुत अजीब गल आखी, बड़ी अजीब गल आखी। कबीर साहब कहते हैं, गुरु प्रसाद अकल सही अवर, इस लफ्ज़ में बहुत गौ नाल सुनना,

गुरु की शिक्षा की चंदी है मन की ज्योत स्वरूप है, तू वाहिगुरु जी की अंश है, तू वाहिगुरु जी की ज्योत का ही स्वरूप है, उसको अलग नहीं है, तू परमात्मा का ही अक्ष है, तू परमात्मा का ही रूप है, पर तू परम दे विच पिया होया है, इस परम नू दूर करके अपनी असलियत नू लभण दी कोशिश करके तू कौन है, ऐ गुरु दी मत है, ऐ गुरु दी मत है कि तेनू ये पता नहीं कि तू कौन है, तू है वाहिगुरु का रूप, वाहिगुरु दी अंश, वाहिगुरु दी तमाम खूबियां शक्तियां वो तेरे अंदर हैं, वाहिगुरु जी की तमाम अकल इंटेलिजेंस वो तेरे अपने अंदर है, वाहिगुरु के तमाम गुण तेरे अपने अंदर हैं, पर तू अपने आप में कुछ होर समझी बैठा है, जो समझी बैठा है तू ओ नहीं है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपना कहने मूल पहचान, अपनी ओरिजिनैलिटी पहचान, अपनी रूट में पहचान कि तू किसका है, कितों आया है, किस दे नाल तू संबंध रखना है, कहते अपने जीवन दे विच ओ लभण की कोशिश कर, अगर तू ओ नहीं लभिया, हम पंक्ति ध्यान नाल सुने, मूल ना बूझे अपना दे पशुआ से तोर दिए, कहते जिन्होंने अपना मूल नहीं लभिया, अपनी ओरिजिनैलिटी नहीं लगी कि उन्हों का आगाज कितों होया, कहते हैं वो पशु हैं अते तोर गवार हैं, मूल न बूझे अपना से पशुआ से तोर जियो, ऐ है गुरु दी मत। तो पहली जी मैं दस चुका हाँ, हम किसी आप ही फर्क देख लो कि गुरु दी मत दे विच की है और बाहरली संसारी मत दे विच की है, जड़ी मत है कि अपने आप नू पछाणना है, आप पछाणो तां कह जाणो, गुरु तेग बहादुर जी ने भी आख्या है ना, ताहिर बन खोजन जाई सर्वनवासी सदा लेपा तो ही संग समाई, बहुत मद जो बात बस है मुकर माहे जैसे खाई, कैसे ही हर बसे निरंतर कट ही खोजो पाई, बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, अपने आप नू चीनन तो बिना, अपने आप नू पछानन तो बिना, अपने आप नू लभन तो बिना मिटे ना परम की साई, ए परम की त्रेव जिहड़ी है निकली है किसी परम की ही रहना पाव, हो कुछ होर अते समझी अपने आप नू कुछ होर जांदे हो, उस तो वड्डी त्रैजडी की हो सकती है, इस तो वड्डी त्रैजडी अते इस तो वड्डी ना समझी, इस तो वड्डी बेअकली की हो सकती है कि मैं होवां कुछ होर अते अपने आप नू समझी कुछ होर जावां, इसमें भी मत वाला आख्या जा सकता है, गुरु जी महाराज कहते हैं पहला ये तो फाइंड कर लो कि तुम हो कौन, उस तो बाद फिर तुम्हें मत वाले क्या जा सकता है, उस तो पहला तुम्हें मत वाले नहीं क्या जा सकता कि तुम्हारे पास मत नहीं है, मन तू ज्योत स्वरूप अपना मूल पछाण, कहते अपना मूल पछाण, ऐ हम नुक्ते मैं आपके सामने रख रहा हाँ कि गुरु की टीचिंग दे विच की कुछ आता है, गुरु की टीचिंग दे विच ए आंदा है, एक होर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है गुरु की टीचिंग दे विच, कोई स्कूल कोई माँ बाप कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज वो बिल्कुल नहीं सिखाएगा, वो की है गुरु महाराज की टीचिंग दे विच आता है कि मरना याद रखो, मरना याद रखो, तेरे माँ बाप सिखाल दे हैं ये गल ईमानदारी के नाल रखना, मेरे माता पिता ने तो मैंने कभी नहीं सिखाया कि मरना याद रखा, मैं तो सच आप जी के सामने दसता, आप जी अपने मतलब जानते हो, कभी किसी ने नहीं दसिया कि भी मरना याद रखी का होंगे, हाँ घर से कोई मरण की गल करे तो यह जरूर सुनीता सी कि मोहरे कहते सुख बोलो, सुचा जी की गल करो, मरण की गल ना करो सुख बोलो, सुख की गल करो, शुभ वचन बोलो,

0: Why should you say that? Why?
1: You are listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
2: Kartapur Nirvair Akal Murat Ayuni Sev Angur Pansad Yat Aad Sat Yugaad Sat Hevi Sat Nani Koshi Vi Sat Chakri Kene Arvar Najat Arpat Nihinjain Duparangya Rari Kripe भूकानस्तत्व है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित तूल कहिं जा भूत इंद्र इंद्राण शाहु शाहान गणिज फिर भवन में ही सुनना रासुर नीत नीत मंडन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समाज सतगुरु आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर प्रभु तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना समना भी आधारी नानक दास संत पाछा करियू राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरिया सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग मानिया सतगुर हुई दयाल ता जम का डर के हा

0: अपने पद करें प्रतपाला अदर तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई अदर तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई
1: वाहे जी का खालसा।

बेटा अमरो जी पिता जी, बेटे जिस शख्स नू तू नाल लैके आई है सस चट साखी नाल जुड़ना इना मैं दस देवा। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दा अजोति जो समान दिहाड़ा है, इसलिए गल शुरू की। बेटा अमरो जी पिता जी, जिस शख्स नू तू नाल लैके आई है उन्हू बाहर क्यों कले हार दिता है, उन्हू बाहर क्यों खड़िया कर दिता, जा लैके आ, लैके आ। अमरो दे दलीज तो पिता गुरु गुरु अंगद देव जी तक जान तक और वापस आने तक बाबा अमरदास ने अपने मन विच गल बना ली कि मैं मुर्शिद टोलन चलिया हां, कोई त्रिपल्ली गुरु न लभवे ए भी कर लवा, मुड़ के फिर मझधार विच फस जावा। हां जे सच्ची बच्ची अमरो दे कहण ते पे हो गुरु अंगद देव पूरा सूरा गुरु है ना, ता ओ मैनू ना लैके बुलावे, ना लैके। दूजी गल, लंगर दा वेला है, संगतां छक रहियां ने ते मेरी मर्जी दे मुताबक मैनू भोजन मिल जाए ता मैं समझांगा पूरा सूरा गुरु है, अंतरजामी गुरु है। इनू उर्दू फारसी च कहंदे ने मुर्शिदे कामल है। हमरो बीबी आई पिता तो इजाजत लैके मुड़ के गई, आखन लगी पिता अमरदास आपनू बुलाया है, याद कीता है मेरे पिता ने। कोल गए ना अमरदास, हाली गुरु ने बने, अमरदास कोल गए ना तो गुरु अंगद देव जी ने आवाज दे के बुला लिया, अमरदास कैसे आए हो, एदा अंदरला मनशा पूरा हो गया पे ना लेता गुरु अंगद देव जी ने। अमरदास कैसे आए हो, तबीयत ठीक है, बखरियत तमाम है, सब सुख सांद है, बैठो जिथे जगह मिलती है, चूंकि भोजन का वेला है इसलिए भोजन छक लवो, बैठो सुख सांद पूछ ली, आदर ना बिठा दिता। सेवादार लंगर पिया वरतांदा है, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने उचेचा बुला के आख्या ओ जो नवा प्राणी आया ना अज ओनू दाल पाती सेवा विच देनी है छकन वास्ते। अमरदास तेरा भोजन आ गया है छको, पर ए अंदर गिटियां गिने अमरदास बाबा जो कुछ मैं ना नहीं लेंदा क्योंकि बहुती चर्चा बच जाती है, लेना भी नहीं चाहिए, असी ए मीट संबंधी मैं अर्ज कर देवा ना लै हो गया, देखो भुल हो गई मीट संबंधी असि बिला वजह असमान तक गल पहुंचा छी है, पंथ दो हिस्से तिना हिस्सा चौ हिस्सा च वंडिया गया है। मैं घर भी देखा पति पत्नियों का तलाक भी हो गया है, इना याद रखो सत्संग जी, ए मैं ऐलानी अर्ज कर लगा एदा साडे धर्म नाल कोई संबंध नहीं है, ए साडी खुराक है, खुराक है, जिदा मसर खा ले, मूंगी खा ले, गोभी खा ले, आलू खा ले। चलो ए जेड़ा नवा प्राणी आया ना सेवादार जी, इस नूं दाल पान देना है क्योंकि अंदर सोच रहा है मैं कदी ये खादा नहीं, जो वरत रहा है, जो वरत रहा है मैं कदी खादा नहीं। गुरु अंतरजामी मैं ठणका के वेख लिया, मेरा नां लैके बुलाया होवे तां किवें होवे। गुरु अमरदास कहन लगे इस नूं दाल भात सर्व कर दो, दे दो, गल निबड़ गई, रहण लग पै। पर अंतरजामता दी मोहर अमरदास बाबे दे दिल ते लग गई सतसंग जी, आ मत्था टेके आपां भी मोहर लगाई आखो सतनाम। समा लंघदा गया, चाकरी करदे रहे, तिन फिक्र सुनने जी। अमरदास बाबे ने इन्नी घालना कीती है ना 12 वरियां विच, ते 12 ते खिताब लए ना, वड्याईयां लईयां, जिवें निमाणियां दा मान, नितानियां दा तां, न्योटियां दी ओट, बेवसीलियां दा वसीला, बेपनाहां दी पनाह, नतीरियां दी तिर। एक बड़ी गजब दी बात है, नतीरियां दी धीरज, जिहड़ा धीरज नहीं ना वधदा किते वी, ओह गुरु अमरदास दे दर्शन कर लवे ते उहदी धीरज आ जाएगा। 12 वरे अंदर बहुत कुछ इत्थे चमत्कार होए, लेकिन एक दिन ऐसा होया कि दरिया ब्यासा ते गए, हमेशा दी तरह आस नाल मुड़ के आंदे हुए जुलाए दी खड्डी कोल डिग पए,
ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਸੀ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਸਰ। ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ, ਦਰਿਆ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰੇ, ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ,

आख्या फरमान दें। आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है, ये आत्म रस दी खुराक है, आत्म रस जै जाने सो है खालस दी।